0: ते कांग कांग ये बार रेगी तो निजू ये बार मारे निजू गा ये बार गना निजू गा बो रेगी तो निजू गोनी ते ये बार मारे मंजू पानी ये के न्यू से ने शक कर मंजू भी ये के जो न्यू तो जो चांसा मातो ये के न्यू पर ते कांग ये बार रेगी रेगी तो निजू भी गोनी ते ये बार मारे वो तेरे ये बार यंचा अने यूं द जो चिक ते दोते से ने को शक ते ने सजी ये के संजो बो तेला अने जिंजू च निजू गा मंजू पाके ये के न्यू से ने अने दर्दी भी गोने अने रारण जम गोने को तें जापा तेरे ये बाय जाता ना दोतें से आज वन दोतें से आज वाह तब दोतें के चीते जी कोरेश
1: तादा छे छे सेंग ही बाते ना कांगे सोमता लोप्ती लेचें जे हमला मुटु अंचु लेचें सेंग जोर गसुयो
0: तने तांग बाते चले से दिल तां जिसे वाया दोर दोर दिवी गोने तें सेविती जिसला तां शिक्षा को गोने जीवी गोने अने माही जी तेरे तेरे जिसे से यार ता जिसे तेरा तंबो चले जना ये गो शर्त तें बाता अने शेरा सोसो के पास तंबो ये जिसे को नोले ये वा सोसो ते मा जीवर से निखे पास ये बाला ये वा शेरा को अने ये गो ते शी गोने तें बाता अने शिती वो तो ला ता शेरा के ये वा सोसो ते चटाई ने तमा ही जी तेरे ता ये गो शर्त तें बाते ला जिसे को नोले ये गो शर्त तें बाते ला शतान खालो जिंजू ता निंजू अने मंजू पागे ये के निश्योरवा तेजो सोसो सोसो के ये वा ता अने निंजू जिंजू के ये के रे रे रे तो को निंज जंबाशे पाला थोमा दे चले जो दिला अने तेजो ते कहानी मा योंसा का कल से ना रा या ना सजी ये के संजोरवा तीन दर कल द सजी ये के संजो पोजो अने देंसे मा डिंग उदी चले देबा सोसो जो अने गोरों दां की बाते अने निंज जंत की जो द हाजां को कच्चे बचा दियो सजे संजो पोजो अने देबा सोसो जो कोर गोरों दां की बागों ने अने निंज सबो जी थक की बाते हाजां कीचे बचा दियो जंसे चले से दिलो तेजो ते सजे ये के संजो पो तेजो ते कोर देबा सोसो जो कोर आर्म देबा तंबो देबा निंबा देबा संबा देबा सोसो जो आर्म ता यां देबा रे रे रे रे को नॉन सजे सोसो सोसो जी ते ने नंसी जी ते ने गोरम पे चाहिए ना देबा तंबो ते कब दे चाहिए उसे तीन दिन से देबा तंबो कहाँ रह जाना कब देबा देश अने कब दे के नंसी ले ये के ये यो पाते के गोरम कंट्री रह जाना तंबो का ये ने निंबा का संबा का ये बा ना वो तीन दिन ले वो शर्ट को देबा सोसो सोसो जी आरम ता नंसी के देबा रे रे रे रे के ते ने ये के सोसो जी गोरम वो तेजो ते अने दिल का सर ता मा ये गयो तीन दिन ता दे ते निंज सब जी थक जी ता हाजांगे ने छिपो चाहिए कहते ने सिबो जी ने निंज माता ना दी जी सर अने मा ही जी के ता निंजु ता जिंजु ते सो रे रे रे अने निंज थक ना अने गरु सो न्योरा मा बो जिंजु रिस तीन दिन ने ला चरे ये गुश ते बारे ता ये गुश ते बा तेला संजे बा के चावा का नाला कांडी सो रे से ना कल शे ता जे दे न ये ये ता द शवा ली से ओ ता छक नी यो बारे तां दे के नां दे चरे से दे कल शे ता जे दे न से आं दे के ता ये गो जे तने सजी ये के संजे पोता जी देबा ते देबा तीन दिन दिग नॉल कल से आं दे ता जागर चिक छाती हो रे चाहिए छानी सजी ये के ही बिते हैं सजी जी के तल को के पारे कल से आते तीन ता जागा लीजा ला कल से ना रा या ना सजी ये के ते सो दे मा देबा शे यों दिलो अने ये के अरे अरे शिनी अने मा देबा शे क्यों रे ता वहीं जा दी कसल मंजू कांजे बाजे ये के जो ये के ना या ते के पाये जा दी कस कल से आ सजी ते जागा जी सजी जी मी ता योर दे वहीं जा ता न निजू कस मंजू पे रंग सजी ते निजू पर ता पे कांजे जो वादे शे पाये ना कल ना सजी ये के संजी पोते ला मा देबा शे उन्ती से कांजे रे से दिल शे ता जे दे नेस देबा शे का ता जे योर एस दे कसे रे शे ता जीस ता तो कांजे से दिल थे में सबो ट्राग थोमा मंजू जागा जी ये के दिल पे शे ने पे जी ये के एक सा यंग से ये के तेसो मातने लंबाई हो बिकास ला ता जागा जी सजी संच सोसन या ना संच सोगे बते सो गुनो ला देबा गुनो ला अनि चोचिया चिर जदि अनि काकांग गा गहा गा गुनो ला अनि गा दाब अतिनि जहा दाब गजान रा दाब अनि टाटान रा दान ना ता नोना चिर जना थुबो गे येगे ता लोबे येगे ला सो बते सो रे रे रे नको फा दरवा तो दरवी छवि जी सल अनि देबा रे रे गुनो ला येगे येरे येरे येरे ला दियो ता तंदे सिने कां ता जाता थेम संबोटा चिर जदि अनि देबा रे रे गुनो येगे येरे येरे येरे सिने देबा सिओ तीन्द्र पेला अनि सजे संच योदिल देबा रे रे ये गेरे गेरे शि जापाय ना अनि देबा दिं ता अनि शका जी शोमार देबा दिं ता शका जी शोमार देबा दिं शुबो ता अनि शका जी शोमार तेला मी गे चपा ह्यो रे से दिल अनि देबा शे ता जी जार

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li no le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de kha la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जुब सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यो से जेजो लंका का मांस दे देना नो येंदा ला यांस से चाव रियो होयो मछु जो जिता मुन्यो दो संग तंगा मोटा तो तो मट ताते ले गेम गने जेजो लंका दी पेंडो रे
0: रे रे तंगा ह गिंग के का शाम बत की छि इन रो तिन मो ने ला सान रो रे
1: और रे रे रे
2: लंका
0: के तो तो हमें चाय या बस के चला जे पिन
1: जो जो को 把做进步没有危机，层面解决难困难，马上有呢，也不有。